0: And now a tune that never loses favor.
1: Hi, Princess. Throw down, portfolio.
2: Aap se matlab?
1: Have a drink with us, babe.
2: No, thank you.
3: Drive par chalogi?
2: Meri shamat aayi hai kya?
3: नहीं डार्लिंग, हम शहजादों का दिल आ गया है तुम पर।
2: मुझे रानी समझ रखा है क्या? वो लड़की पागल होगी जो तुम जैसे जानवरों के साथ जाएगी।